0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान भाई बहनों को हमारे
1: राम
0: राम राम।
1: पायल बहन, देखिए मौसम काफी बदल गया है।
0: बिल्कुल,
1: गर्मी इस कदर बढ़ी है कि जिंदगी जो है ना बेहाल है।
0: बिल्कुल भाई, एक तरह
1: और हमारे किसान भाई जो है उनकी कोई भी क्रियाकलाप हो, कोई एक्टिविटी हो, वो बिना खेतों में गए हो ही नहीं सकती है। खेत, बाग, बगीचे, उनकी खलियान, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके पशु जो हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था

0: कि रीढ़ से जुड़ के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके बिना ना तो हमारी खेती चल सकती है और ना ही जो है कि और कई बहुत सारी दूसरी चीज़ें, जैसे हम श्वेत क्रांति की बात करते हैं वो सीधे उससे जुड़ा हुआ है। तो ये तापमान जो बढ़ रहा है इसके कई वजह हो सकते हैं, लेकिन हम आज बात ये करना चाहेंगे कि कैसे हमारे भाई बहन, खासतौर से गाँवों के लोग, कैसे अपनी खेती बाड़ी और तमाम चीज़ों को सुचारू रूप से चलाते हुए मौसम से बचें।
1: बिल्कुल, देखिए बात आपने मौसम की कर...

0: निराई का, गुड़ाई का, खरपतवार का, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, छोटे छोटे काम जो हमारे किसान भाई बहनों को करने पड़ते हैं। तो ऐसे में तो भाई हम एक चीज़ तो ज़रूर कहेंगे कि भाई इस गर्मी में अपना ख्याल रखें, अपने पशुओं का ख्याल रखें। और जैसी आपने बात कही है दुग्ध क्रांति की, श्वेत क्रांति की, तो भाई हमारे सभी लोग जानते हैं कि जैसे जैसे कृषि की जोत कम होती जा रही है, ऐसे में आबादी बढ़ती जा रही है, ऐसे में जो मुनाफा है किसान का
1: वो
0: घट रहा है। तो ऐसे में हमारे किसान भाई और भी
1: खेती की बात आप कर रही हैं, वो बिल्कुल सही कर रही हैं
0: बिल्कुल। और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपने पशुपालन की बात कही है, पशुपालन के साथ साथ मत्स्य पालन है, बहुत सारी चीजें हैं तो वो भी कर सकते हैं।
1: और बड़ी चीज है कि अपने मतलब इस ऐसे मौसम हार्ड मौसम से बच के, विपरीत मौसम से बचते हुए हम जो है कि मशरूम की खेती है और इस तरह की बहुत तरह की वनस्पतियां हैं ना, उनकी खेती कर सकते हैं जो औषधि काम में आती हैं। तो इस पे हमारे किसान भाई जो है कि थोड़ा सा ध्यान दे के ना मौसम से बचते हुए अपनी आय को सतत रख सकते हैं।
0: बिल्कुल, आय बढ़ा सकते हैं, आमदनी बढ़ा सकते हैं। छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन्हें कर भाई, जैसे कि नमी वाले तापमान में आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो आज इसी बात में हम एक बातचीत सुनवाते हैं अपने सभी बहन भाइयों को, गाँवों में मशरूम का उत्पादन जो है
1: उसकी क्या संभावनाएं हैं ना, इस पे बातचीत जो है कि कर रहे हैं डॉक्टर भारत सिंह, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं शिकोहपुर गुरुग्राम के।
0: तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
2: साथियों नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कार्यक्रम में प्रत्येक दिन कोई ना कोई ऐसी जानकारी अवश्य आपके लिए लेकर के आते हैं जो हमारे लिए जागरूकता होती है, आमदनी का जरिया होती है और कहीं ना कहीं खेतों और खलियानों को खिलखिलाने का अवसर देती है। आज हमारे युवा साथी जो हम पारंपरिक कृषि कर रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, यदि हम देखें कि उससे अलग भी कुछ ऐसी फसलें हैं, ऐसे कृषि उत्पाद हैं जिनका बाजार में भाव बहुत अधिक रहता है, तो क्यों ना हम भी उनकी ओर अग्रसर हों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि गाँव में मशरूम उत्पादन की संभावना। इस विषय पर विशेष जानकारी लेकर के हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर भरत सिंह। आप वैज्ञानिक हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के गुरुग्राम स्थित कृषि विज्ञान केंद्र से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
3: नमस्कार
2: जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय है मशरूम को लेकर के, तो जो हम ग्रामीण अंचल में आज भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं जब हम नई फसल की बात करते हैं, नई कृषि की बात करते हैं, तो हमारे किसान भाई बहन हो या हमारे जो युवा साथी हैं वो हो, एक झिझक होती है, उसे पैर पीछे खींचते हैं कि कहीं घाटा ना हो जाए। तो आज इन सब बातों पर स्पष्ट चर्चा रहेंगे कि गाँव में मशरूम उत्पादन की संभावना। तो हमारे जो ग्रामीण युवक हैं, हमारे किसान भाई बहन हैं, मशरूम की खेती में कैसे संभावना देख सकते हैं ग्रामीण स्तर पर?
3: देखिए, मशरूम की खेती करने के लिए हमारे किसान भाइयों को एक तो बहुत ज्यादा अपार संभावनाएं हैं, इसमें सुनिश्चित एक निश्चित आमदनी का साधन भी मशरूम की खेती को हम कह सकते हैं। तो जहां तक आपने झिझक वाली बात कही, तो झिझक वाली इसमें कोई ऐसी बात है नहीं, क्योंकि हमारे जो युवा हैं और हमारे किसान भाई हैं, मशरूम की खेती करने से पहले एक प्रशिक्षण जरूर लेंगे। अगर प्रशिक्षण ले लेते हैं किसी भी सरकारी संस्था से, या राज्य सरकार के बागवानी विभाग हैं या और कोई भी संस्था है वहां से, तो प्रशिक्षण के बाद में मशरूम का कार्य की शुरुआत करेंगे तो इसमें उनकी झिझक भी खत्म हो जाएगी और फिर इसमें कोई भी उनके लिए रिस्क वाली बात तो सामने आएगी नहीं।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि यदि हम किसी भी कार्य को प्रशिक्षण से लेकर के शुरू करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो नुकसान है वो नगण्य हो जाता है, अच्छा लाभ मिलता है। तो प्रशिक्षण के लिए हमारे साथी कहां संपर्क कर सकते हैं जो मशरूम के लिए कि उन्हें प्रशिक्षण चाहिए, तो कैसे उनकी पहुंच वहां तक हो सकती है?
3: हमारे किसान भाई जो है अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाके संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में देश के लगभग प्रत्येक जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, तो वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें। उसके साथ ही उनका जो जिला बागवानी विभाग है तो वहाँ जाकर के भी संपर्क करेंगे, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि जो बागवानी विभाग है वो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम मशरूम के लिए आयोजित करते हैं, साथ में कृषि विज्ञान केंद्र भी जो है मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति से मशरूम की खेती को सिखाने के लिए अपने युवाओं के लिए साल भर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, तो वहाँ प्रशिक्षण के लिए जाएं। या फिर उनके और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक डायरेक्टेड ऑफ मशरूम रिसर्च है सोलन में, वहाँ पूरे देश के किसान भाई वहाँ से जाकर के भी प्रशिक्षण लेते हैं, तो प्रशिक्षण की कोई किसानों के लिए मुश्किल नहीं है, वहाँ से प्रशिक्षण आसानी से प्राप्त करके मशरूम की खेती को वो अपना सकते हैं।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब बात आती है कि प्रशिक्षण भी ले लिया और हम कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है सभी को, कोई भी हम नया काम करेंगे तो पैसे की बड़ी दिक्कत है, कहीं ये लगेगा कि भाई आरंभ हम कार्य कर रहे हैं तो इसमें कितना खर्चा आ जाएगा, कुछ मैं बचा पाऊंगा या नहीं पा, तो इसमें कितना खर्चा शुरू में हो सकता है कि अगर हम कोई कार्य शुरू करें?
3: मशरूम की खेती का

0: कार्य करने के लिए दो तरह का प्रक्रिया करनी होती है। जैसे कि अगर हमारे किसान भाई प्रशिक्षण के बाद में उच्च तकनीकी युक्त मशरूम का घर बना रहे हैं तो उसके लिए बागवानी विभाग की योजनाएं हैं, उसमें 24 लाख रुपए से लेकर के 40-50 लाख रुपए तक का भी उनको एक अनुदान राशि का भी उसमें प्रावधान है, लेकिन उसके लिए प्रशिक्षण बहुत मस्त है। जब प्रशिक्षण ले लेंगे तो तभी वो अनुदान राशि, क्योंकि उसके लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अगर हमारा एक साधारण किसान भाई है जो कि इतना बड़ा अनुदान नहीं लेना चाहते हैं या किसी कारणवश वो ले नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हमारे किसान भाई कम लागत से भी मशरूम का घर, जिसको गांव के स्तर पर झोपड़ी कहा जाता है, एक साधारण सी झोपड़ी बना करके जिसका साइज हमारे किसान भाई अपनी उपलब्ध जगह के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं, जैसे कि 15 फीट 20 फीट चौड़ा है और 30-40 फीट लंबाई वाला आकार का कहीं भी उनके घर के आसपास में खाली जगह पड़ी हुई है या उनके पास में अतिरिक्त कोई कमरा है, बरांडा है, उसके अंदर भी वो मशरूम का घर बना करके, क्योंकि इसमें ये देखा जाता है कि खुली जगह पर मशरूम की खेती हम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए उसको पूरा बंद करना पड़ेगा और बंद करने के लिए चाहेंगे साधारण सी घास फूस की टाटी, धान का पुआल है या सरगंडा का जो फूस होता है, उससे भी हमारे किसान भाई एक कम लागत में मशरूम का घर तैयार कर सकते हैं। फिर उस मशरूम घर के अंदर में लगभग 2-2.25 फुट की अंतर पर अलग अलग रैक्स क्रिएट किए जाते हैं, जहां पर हम मशरूम के बैग या मशरूम का जो खुला सिस्टम है उसके आधार पर भी बेड बना करके उसके अंदर कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि एक अगर 15 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा एक मशरूम का घर बना लिया, उसमें 6 तह वाला रैक बना लिए, तो उसमें लगभग जो है 500 तक आराम से मशरूम के बैग आ जाते हैं। उनको बैग को रख करके हमारे किसान भाई उसमें मशरूम की खेती को सुचारू रूप से कर सकते हैं।
1: यानी कि ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि केवल 15 फीट से 20 फीट के कोई भी एक कमरे में हम ये शुरू कर सकते हैं, तो इसमें खर्चा अपने ऊपर, यानी कि जितना बड़ा काम करना चाहते उतना अधिक खर्चा, लेकिन अधिक में कहीं ना कहीं सरकार भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, वो अनुदान के रूप में आपकी सहायता निश्चित रूप से करती है। अब बात आती है, जैसे आपने कहा कि हमने मशरूम का घर बना लिया, कोई कमरा है या कोई झोपड़ी है, लेकिन अब उसमें जो आवश्यकता होगी, जो कंपोस्ट है, के लिए क्या कुछ हमारे किसान भाइयों को करना पड़ेगा?
0: मशरूम के लिए मुख्य तौर पर इसमें तीन जो सामग्री है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मशरूम के लिए कंपोस्ट बनाना, जो एक प्रकार की खाद होती है, तो जिसको हम मशरूम की कंपोस्ट कहते हैं। दूसरा है मशरूम का बीज
1: जी।
0: तीसरा है मशरूम के लिए केसिंग सामग्री। तो ये तीन चीजों की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो मशरूम का बीज है, नियर बाई कहीं कहीं जिला स्तर पर कोई इकाई होगी, मशरूम बनाने वाली कोई प्रयोगशाला होगी, तो वो आराम से उन जिले के अंदर ही या आसपास कोई विभाग है, बागवानी विभाग है, जहां भी हमारे किसान भाई रहते हैं, निश्चित रूप से वहां पर बीज मिलने की संभावना होती है। अब इसमें बाकी जो दो सामान है, चाहे मशरूम की कंपोस्ट है या फिर केसिंग सामग्री है, इसको हमारे किसान भाई आराम से अपने फार्म पर जो उत्पादित जो अवशेष हैं, फसलों के अवशेष हैं और पशुओं का जो गोबर है, उसकी खाद है, जो गेहूं का भूसा है, उसी से सारे सामान आसानी से तैयार हो जाते हैं। जब हमारे किसान भाई किसी प्रशिक्षण में जाते हैं तो प्रशिक्षण के दौरान उनको सारी प्रक्रिया समझा दी जाती है कि इसमें कंपोस्ट बनाते समय कितनी कितनी मात्रा में, बहुत सारे कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जैसे गेहूं का चोकर है, यूरिया है, जिप्सम है, म्यूरेटा पोटाश है, उनको भी एक निर्धारित मात्रा में उसमें कंपोस्ट बनाते समय समायोजित किया जाता है और लगभग 28-30 दिन की प्रक्रिया में और कम खर्चे में, इसके लिए कोई किसी प्रकार के उच्च तकनीकी युक्त घर की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कंपोस्ट आराम से बना सकते हैं। लगभग कंपोस्ट में 6-8 पलटाई करनी होती है 3-3 दिन के अंतर पर, और फिर वो हमारी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। ये प्रक्रिया शुरुआत में थोड़ा सा एक किसान के लिए इसको मेहनत ही कह सकते हैं, लेकिन एक साधारण सी मेहनत है, इसमें कोई विशेष वो बात नहीं है
1: जी। डॉक्टर साहब, जब बात आती है कि मशरूम के लिए कंपोस्ट भी तैयार है, बीज भी मिल गया है और हमने लगा दिया, तो ये फसल लगभग कितने दिन की हो?
0: ये फसल लगभग ज्यादा से ज्यादा 2 महीने की फसल होती है। एक बार अगर मशरूम आपने लगा दिया, मशरूम के घर में मशरूम आना शुरू हो गया, तो देखा तो ये आता है कि उसमें 3 या 4 बार ही अच्छा फ्लस आता है, फ्लस का मतलब अच्छी तरह से फसल का बूम आता है, तो 3-4 बार में मशरूम का अधिक से अधिक प्रोडक्शन जो है वो मिल जाता है। उसके बाद में मशरूम का जो फसल है ना, वो थोड़ी कम आने लगती है। तो अगर किसान भाइयों के पास में टाइम है तो कम रूप में भी फसल को लेते हुए फिर अपनी फसल को आखिरी की तरफ ले जा सकते हैं, या उनको फिर मौसम अगर अनुकूल है और नई फसल लगानी है तो हमारे किसान भाई जो है उस घर को फिर खाली करके फिर उसमें दूसरा जीव क्रॉप उसमें लगा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं कि सामान्य फसलों में कीट की और रोग की बड़ी एक समस्या है, तो क्या मशरूम के उत्पादन में भी या मशरूम की फसल में भी ये कीट और रोग प्रबंधन पर हमें क्या ध्यान देना होगा, ये आते हैं या नहीं आते?
0: मशरूम की खेती में कीड़े और रोग भी आते हैं, लेकिन उसके आने की वजह मुख्य रूप से यही होती है, अगर मशरूम

0: अंदर में अच्छी तरह से साफ सफाई है, कंपोस्ट को आपने ठीक तरीके से बनाया है, उसमें आवश्यक सामग्री को सही ढंग से समायोजित किया है, तो उसमें कीड़े और पतंगों की आने की कोई भी संभावना नहीं रहती है। कई बार ये देखा जाता है कि हमारे जो किसान भाई है ना, मशरूम घर को पूरी तरह से बंद कर देते हैं, उसमें एयरेशन नहीं होता है, ताजा हवा नहीं उसमें जाती है, तो उस स्थिति में उसमें फिर कोई भी समस्या, बीमारी है, वायरस वाली है या बैक्टीरिया वाली बीमारी आ जाती है, या उसमें माइट है या दूसरे जो मक्खी है वो उसमें प्रवेश कर जाते हैं। जब उसमें कोई मशरूम के घर के अंदर का मौसम सही नहीं होगा तभी ये समस्या आती है। तो वो समस्या नहीं आए उसके लिए हमारे किसान भाइयों के लिए साफ सफाई का मशरूम घर के अंदर में विशेष ध्यान रखना है। कोई किसी प्रकार का अंदर में धूम्रपान नहीं करना है, कोई किसी प्रकार की अंदर में गंदगी नहीं छोड़नी है, गंदे पैरों से अंदर में नहीं जाना है और गंदे हाथों से कोई भी मशरूम के कार्य को, फसल की कटाई को नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं यही बताना चाहूंगा अपने किसान भाइयों के लिए कि जब भी मशरूम के घर में जाए उससे पहले आप अच्छी तरह से अपने हाथों को साफ कर लें, पैरों को साफ कर लें और अंदर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर मशरूम तोड़ते समय मशरूम की खाद है, मशरूम के कोई भी प्रोडक्ट है वो जमीन पर नीचे गिर जाता है, तो अंदर में उसको एक अलग से वहां पर सफाई का ध्यान रखें, अंदर में कोई झाड़ू भी लगानी पड़ती है, तो मशरूम घर के अंदर में उसी कार्य के लिए एक झाड़ू अलग से होनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है परे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि कीड़े बीमारी इसमें तभी आएंगे जब हमने सावधानी प्रॉपर बरती नहीं है। तो अगर कीड़े बीमारी इसमें आ जाते हैं तो फिर उसमें हमारे कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि हमारे किसान भाई हैं उसमें किसी प्रकार के कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, तो तैयार फसल पर कोई किसी प्रकार के कीटनाशक के छिड़काव की मैं सिफारिश नहीं करूंगा, क्योंकि हर एक दिन के बाद मशरूम की तुड़ाई होती है और मशरूम का जो फल उसमें 90% पानी की मात्रा होती है
1: जी।
0: तो उसमें कीटनाशक अवशोषित हो जाते हैं, वो फिर ऐसा मशरूम मार्केट में जाता है वो हमारे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक नहीं होता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने अगले प्रश्न को यहाँ जन्म दे दिया कि उपभोक्ता और मार्केट। हमारे किसान भाई बहन मान लीजिए कि वो खेती कर रहे हैं और आपकी दी हुई सलाह के कारण उनका उत्पादन भी अच्छा हो रहा है, तो अब इसमें वो अपने लिए कैसे बाजार आसानी से चुने कि उन्हें उपभोक्ता मिले और अच्छा उत्पादन जो है वो बाजार तक जाए और उनकी जो कहीं ना कहीं आमदनी है वो बढ़ जाए।
0: देखिए, हमारे दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में मुख्य रूप से तीन प्रकार की मशरूम का बहुत ज्यादा विशेष चलन है। नंबर वन पर तो बटन मशरूम आती है जिसको हम श्वेत खुम्भ भी कहते हैं, तो ये बटन मशरूम होगी, दूसरा दूधिया मशरूम है, तीसरा एक जो है ढिंगरी मशरूम है। इन तीनों प्रकार की मशरूम में सबसे ज्यादा जो चलन में है मशरूम वो बटन मशरूम में है, और ये बटन मशरूम में देख रहा हूँ कि आज के समय में 12 महीने मार्केट में मिल जाती है। दूसरा, ये हर घर की ये आवश्यकता बन चुकी है, तो मशरूम की बिक्री वाली जहां तक बात है, बिक्री को लेकर के कोई भी किसी प्रकार की भी समस्या नहीं है, क्योंकि गाँव में भी आज के में मशरूम का अधिकतम भाग गांव में ही सेल हो रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि 50% अगर आपके पास में 5 क्विंटल मशरूम निकली या छोटी यूनिट से 2 क्विंटल मशरूम निकली है तो उसका आपका 50% भाग जो है मशरूम का लोकल गांव में या लोकल जो हमारे सब्जी विक्रेता है गांव में, सब्जी की दुकानें होती हैं वहीं पर के माध्यम से बिक जाती है, और फिर नियर बाई हमारे आसपास के क्षेत्र में जो आपका लोकल मार्केट है जहां पर सब्जी मंडी होती है, तो सब्जी मंडी में जाकर के आप इसको आसानी से बिक्री कर सकते हैं जैसे वहां पर और सब्जियां बिकती हैं। इस तरह से तो मशरूम की बिक्री को लेकर के सभी किसान भाइयों को एक मैसेज है कि बिक्री को लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसानी से इसकी बिक्री हो जाती है और अच्छे दाम पर बिक्री होती है इसकी।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गांवों में मशरूम उत्पादन की संभावनाएं विषय पर डॉक्टर भारत सिंह वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक रहे हैं शिकोहपुर, उनसे बातचीत कर रहे थे अमित तेवतिया। तो साथियों, ये विशेष जानकारी आपने पाई है। इसके अलावा आप जो है कि कई तरह के गैर सब्जी यानी औषधि मशरूम की भी खेती कर सकते हैं, उससे मुनाफा कमा सकते हैं। और आइए इसके साथ अब आपका कराते हैं मनोरंजन।
3: सुनवाते हैं रेनू बर्मन की आवाज में ये

अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे रेणु बर्मन की आवाज़ में ये शिक्षा गीत, और चलते चलते अपने सभी भाई बहनों को सुनवाते हैं शीशपाल सिंह भाटी की आवाज़ में एक ये रागनी किस्सा रहेगा सरवर नीर का।

अभी आप सुन रहे थे सरवर नीर का किस्सा शीशपाल सिंह भाटी की आवाज में, और इसी के साथ हम अपने ग्रामीण भाइयों बहनों को इस कार्यक्रम को समाप्त करने की गुजारिश करते हैं। सभी ग्रामीण साथियों को हमारा राम राम, राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब समय है कार्यक्रम गजलों का, आइए सुनते हैं गजलों के खूबसूरत खजाने में से एक ये खूबसूरत सी गजल।

0: था, फिर हमारा रूस और यूक्रेन की लड़ाई का भी असर देखने को मिला और उसके बाद अब पश्चिम एशिया का संकट। लेकिन इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे ज्यादा की दर से विकास करती रही। कैसे संभव हुआ, क्या कुछ रही कहानी, आगे क्या कुछ हो सकता है, इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रेलवे, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार
0: सर। 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी थी, लेकिन 7% या उससे ज्यादा की विकास दर को हम हासिल कर पाए, किस तरह से नीतियों ने इसमें मदद की?
1: इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के NPS बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके NPS कम करने का प्रोसेस चालू किया, कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, NPS लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया, फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला, भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब $30 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज $130 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें UK से तो मेरे ख्याल से less than 50% है, कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई। उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटेजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा।
0: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल 5 में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है। क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रुपए तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है उसे आप किस तरीके से परिभाषित करते हैं?
1: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी, हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, 1,300 स्टेशन का पुनर्निर्माण, नव निर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशन में से करीब करीब 250 स्टेशन कम्प्लीट हो चुके हैं, इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कम्प्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, मैंने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना। कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे, जिनको माने प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है, जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में, वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उन सबके साथ मिलके, तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए। ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया, कई प्रोजेक्ट जैसे

0: चिनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं, तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ भी कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को। प्रधानमंत्री जी ने इसको कंप्लीट किया।
1: सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग ट्रिपल पी कहते हैं, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है ट्रिपल पी को पीपल, प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है?
0: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
1: पीपल, प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी।
0: प्रोडक्टिविटी, बहुत अच्छा नाम दिया। जनरली पीपीपी मैंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस, देखिए रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू द हाईवे सेक्टर। इसीलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस जो आपने कहा प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है, और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया, उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी, और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही हैं, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से, तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे।
1: सर, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
0: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए, आखिर सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशंस लेने चालू किए थे, उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का यह भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा, उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे। ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी, इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया, इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स है वो ध्यान से आए। सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया। टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसका उदाहरण है आपके सामने, देखो सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के डिजाइन की हुई है चिप्स। ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया, और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया। हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे, उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहां पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की, 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए।
1: तो अब अगले, अगर मैं 2 वर्ष में कहूँ तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहाँ देखते हैं?
0: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है विद इन 4 ईयर्स। जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड चिप्स हमारी, ये माइक्रॉन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से, 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माने प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना, और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और ATMP यूनिट्स और आएंगे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है, उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है।
1: सर, एक चीज हमने और भी देखा कि जो PLI इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने किया, और उसका एक सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हमें मोबाइल हेडसेट के मामले में देखने को मिला। एक ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल फोन बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड होता था या मेड इन कहीं और होता था। अब हम मेड इन इंडिया

0: असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें, तो ये जो पीएलआई स्कीम है, ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया, वहां पर हम आगे का सफर कैसे देख रहे हैं?
1: बहुत फायदा हुआ। सबसे पहले तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई। और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर
0: जी,
1: तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट,
2: तो कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा।
1: ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट, इतना प्रिसीजन।

0: स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट,
1: तो कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा।
0: ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट, इतना प्रिसीजन का काम था। जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है। तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट सीख पाते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आके, इस तरह का काम है। तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर द सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करीब 250 फैक्ट्री होंगी, और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई एक एग्जांपल आपको दूंगा। रेलवे का जो प्रोपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो प्रोपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड यूएस। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भारत से एक्सपोर्ट होने लगी।
2: तो अगले, अगर मैं पीएलआई के अगले चरण की बात करूं तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
0: बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिजाइन की कैपेबिलिटीज बढ़ना, और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, सिक्स सिग्मा लेवल पे लेके जाना।
2: सर, अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं तो दो ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं। एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पे रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पे अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था, इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हो और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है वो अगर बता सकते?
0: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था। हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग बिग बिग प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के सीईओ का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जांपल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके सीईओ मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था, और उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुइसाइड होता था गेमिंग के कारण। वो सारी चीजें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपए मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपए मैं गेमिंग में गंवा देता था, और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब परिवार हमारा खुश है। लेकिन इस तरह के कई एग्जांपल्स।
2: लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि वीपीएन के जरिए और उन सब के जरिए,
0: ये बात ठीक है आपकी,
2: तो आप कैसे उस पे रोक लगा?
0: ये बात ठीक है। देखो, जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीकों से करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो। तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है।
2: और सर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के किस तरीके की?
0: बहुत ही वेल थॉट थ्रू बिल है ये, जिसमें 7 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सिटीजंस के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया इनोवेशन और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके।
2: अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सकें आप तो?
0: टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा

0: रेजिडेंट एआई एक टेलीकॉम टावर करीब 2000 पैरामीटर्स लेता है जिसपे वो काम करता है एक साथ. उन पैरामीटर्स को अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती हैं, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है. अगर उसमें एआई लगता है हर टावर के अंदर तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी. और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल और टेलीकॉम में एआई का रोल वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा.
1: लेकिन ये भी कहा जाता है कि एआई बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, एआई के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी?
0: जितनी आईटी सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड हैं, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट की जाए. अभी हाल ही में नैसकॉम के माध्यम से आईटी इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है जिसको एआईसीटी के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं. तो वही प्रयास है आईटी इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है.
1: अश्विनी वैष्णव साहब बहुत बहुत धन्यवाद.
0: नमस्कार.
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूचना और प्रसारण रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार. साक्षात्कार कर रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा. ये आकाशवाणी है. विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अब सुनिए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार. साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर.
3: नमस्कार. 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी, जो सपने थे, वो भी ऐसा लगा था पूरे होने की कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं. और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी मोदी मोदी मोदी कर रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं, और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रखकर लाया है. चलिए इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है, और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था, किरण रिजिजू जी का. और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इससे पहले कानून मंत्री रह चुके हैं. तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है. बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका.
4: धन्यवाद.
3: और 12 साल की ये जर्नी, आप इस जर्नी को कैसे देखते हो?
4: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है. मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं आया है, हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं. तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है, और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है. और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है. नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनावों में तो घोषणा ही घोषणा होते थे, गरीबी हटाओ नारा लगाना, ये एक फैशन सा बन गया था उस जमाने में. लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूं कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश, और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और

0: से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है।
1: आपने क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब एक रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं?
0: आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही सरेंडर हो गए थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया भेजता है तो 15 रुपया पहुंचते हैं, 1 रुपया में 15 पैसे पहुंचते हैं। आज तो एक बटन दबाया केंद्र सरकार की ओर से, कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है, डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम्स जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है, ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा 12 साल पहले देश का हालत क्या था। जब कांग्रेस यूपीए सरकार थे तब हम भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के, पॉलिसी पैरालिसिस होकर के, और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है, इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूँ कि जो हमारा सरकार का थीम है, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन, देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं।
1: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज पीएम का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज पीएम वो बोल रहे हैं।
0: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। देश के जिस आदमी का आप पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे। चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदंबरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है यूपीआई के बारे में मजाक उड़ाया था कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं, सामान बेचते हैं, उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा,
1: वो बैंक के खाते का क्या करेंगे।
0: तो ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं। राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो, लेकिन मालिक तो जनता है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में, और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा। स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते, उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था। सबको मालूम है हमारा इकोनॉमी, हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे। अब हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरह ग्रोथ करेंगे, और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपने इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फख्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
1: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहाँ से आप आते हैं, वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था, वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
0: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा परिवर्तन हो गया है। बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे। जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था, और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते हैं। आजकल तो चाहे लद्दाख हो, चाहे मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है, और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितना बन गया है, जो 1 इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले, आज वहाँ चकाचक हाईवे बन गए हैं, लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है। गांव गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया, फिर आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस जमाने में तो फोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे। तो आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता भारत में है मोबाइल।
1: लेकिन लेकिन इसका फायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है?
0: वो तो विषय अलग है, उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए।

0: वो विषय अलग है, लेकिन सुविधा सबको मिला है, ये बड़ी बात है।
1: जेन जी के बारे में क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर और जेन जी खतरा लग रहा है क्या अभी?
0: देखो, जेन जी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं। फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेन जी जो कहते हैं, वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं,
1: क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगी। राहुल गांधी जेन जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेन जी से मिल रहे हैं, सब जेन जी से।
0: राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं एक विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहाँ वो छुट्टियां मनाते हैं रिजोर्ट में, छुप के कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं है, और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है, उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
1: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
0: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहाँ दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आ करके फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है?
1: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।
0: देखो, किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हम आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
1: आपको लगता है कि ये जो विदेश विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
0: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में, वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं, और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे, कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चूक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है, लेकिन कोविड का समय, ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारा सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं, और अभी ईरान अमेरिका इसराइल का लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं, ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रहा है, तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आम तौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ, तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो, या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जब विशेष परिस्थिति आते हैं, जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में

0: इस मुकाबला कर रहे हैं, ऐसे समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए, ये तो सब मानते हैं। लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में आपको लगता है ये जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
0: देखिए, राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है। मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं। लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है। अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं। दिन भर नारा लगाते रहते हैं, अपना एमपीओ को जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहां तमाशा कराते रहते हैं। तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मल सी कर दिया। अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व तो मान लिया है। संसद के अंदर में बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना और सरकार का नीति में खामियां है तो उसको उजागर करना, और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन वो संसद में बोलना, वहां प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है।
1: मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी?
0: मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव, निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं, तो एक बोलना मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही। और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर।
3: இதுவரை இன்று 7:10 ஆகாஷ்வாணி டெல்லியிலிருந்து ஒளிபரப்பான மத்திய அரசின் 12 ஆண்டுகால சாதனை விளக்கம் நிகழ்ச்சி தொடர் ஒளிபரப்பானதை ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் கேட்டீர்கள். நன்றி.